जाए कसरता ब्रो वो चिन्ह अगेन को नी तो उसको इच्छा चिकित्सा गोल से थी नहीं ले पेटू तक अच्छा गुल्लू खबो का मनुत इन कसर हुए चुतन ये कैसे भी गोल से आगे मीन कैसे हुए चैनन को मुझे तो नहीं गया नवा इगेस रूद चेम याच को अब तीन दिन ने तीन जंगल और तीन को गोल लगे सुई चबुआ ने इन जॉकी ने अब जब मंगे में गए उद चौथन को अराका WH11 अक हराका WH301 चित्तौरे का सरताबी तुसिक दिसाई ने अब वो बोल लगेंगे अक्टिव टेम गिच्योग असीगेस Kambunita Western Seed kutunye geswek alago Aminika 403 Tibika sartane nuach asigas Agubu ane kukororon kunyalilin Aminika 505 Chimange memyanu agig Agugun rute chemyach Aminika 507 Chitinye mubik chegimin Agunyalilin kuboto kukororon in silage Aminika 508 Chigisini bande kichang Agugun rute chemiten baraga Men kusirin kasari ton barob tane nuach Keri iligi baisin keswek chayanotin kubun Western Seed Maze Rutejin Raini, Agrodila, Agrovet, Distributor, Tupande, Ananko KV, Outlet Tagatugul, Nenegitenin, Entebu Tagatugul, Ibir Simet Kwa Number, 0705-505-505, Ananyep Chi, Tadudetab, Mesetab Taj FM. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.